सुखी एक एक की पीर पशान है घट घट के पट पट की जान है जब उद करख करा करतारा प्रजा धरतव देह अपारा जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते

था कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप जंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी।

माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पो

0: वादी कश्मीर, समझे वेल ऑफ कश्मीर कहते हैं, और समझे अंग्रेजी में कहते हैं इसकी खूबसूरती लाजवाब है, ब्रेथ टेकिंग कश्मीर, वादी कश्मीर। खैर अभी अभी हमें रहमत ने बताया है कि ऋषि कपूर आज के दिन पैदा हुए थे, 4 सितंबर। अब आप ही बताएं कि अगर वो जिंदा होते तो कितने बरस के होते। समय अच्छे अदाकार थे, पहले नहीं बाद की फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने जौहर दिखाए। सो और सना काना ने आप सबको, दोज हु हैव नोन हार्डशिप अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ काइंडनेस, बिल्कुल सही। और साथ ही कोकिला हैं यूनाइटेड किंगडम में, और जुमा मुबारक का, और हैप्पी जन्माष्टमी है आज, टू ऑल द जन्माष्टमी, थैंक यू। ओके, मुझे बता दें कि जन्माष्टमी के दिन को किसका जन्म होता है, रेखा क्या कहती हैं?
1: हेलो परवीन जी, अस्सलाम वालेकुम, रेखा शाह बोल रही हूँ, आप कैसी हो? सबसे पहले तो परवीन जी आपको और बेमिसाल अंदाज के सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरा परवीन जी, आप वो गाना लगाना, ये गाना इस तरह से है, यशोमती मैया से बोले नंद लाला मैं क्यों गोरी और का, सॉरी, यशोमती मैया से बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला, वो गाना आप जरूर लगाना।
0: जी जरूर जरूर, मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन फिर भी जन्माष्टमी का पता नहीं चला कि आज के दिन क्या मनाया जाता है। चिराग पटेल फ्रॉम कराटीना आप भी जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, और जो अमीर अली राणा ने कहना है थोड़ी देर के बाद।

0: अब देखते हैं कि अमीर अली राना का क्या लिखना था. कहते हैं आई कांट प्रूव माई सेल्फ एनी मोर बट इन शायरी. कहते हैं ख़त्म करते हैं अब सफाइयों का सिलसिला, तुम भी थक गए होगे हमसे बुरा हमें बुरा समझते समझते. कहते हैं छोड़ो सफाइयों का सिलसिला, अब तो तुम भी थक गए हो हमें बुरा समझते समझते. जो तुमने समझा मैं वो था ही नहीं, और जो मैं हूँ वो तुम्हें कभी समझा ही नहीं. क्या बात है, वाह, ठीक है अमीर अली राना. शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका कहती, डिड यू नो डायमंड्स कैन फॉल एज रेन ऑन सम प्लैनेट्स, ऑन नेपच्यून एंड यूरेनस इंटेंस प्रेशर कैन ट्रांसफॉर्म कार्बन इनटू डायमंड्स. This can cause diamond rain that may drop as much as 2.2 million pounds on Saturn every year. समझ, अगर यहाँ भी हीरों की बारिश हो जाए तो क्या ही, बहुत ही अच्छा हो जाए. कुछ लोगों को हीरों से इतना लगाव होता है. खैर, भरत गंगाराम, जन्माष्टमी आज कृष्ण की है, शुभकामनाएं तमाम को लंदन से भरत गंगाराम. बहुत शुक्रिया कृष्ण. ओके, ठीक है. और नीला शेठ ने भी कहा है हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल. और प्यार अली भाटिया ने जुमा मुबारक कह दिया है हमें.
1: रविंद्र जी, हर चेहरा वो चांद, ये गाना फिल्म आबरू का है जिसको मोहम्मद रफ़ी ने गाया है और जी एल रावल ने लिखा है और जिसकी धुन सोनी ओमिन ने बनाई है. गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए आपका शुक्रिया.
0: और यहाँ पर हैं सलमा अहमद. सलमा क्या कहती हैं?
2: तोहीन, तोहीन यानि इंसल्ट, वो है जो आप किसी को दर्द देते हैं और दिल दुखाने की बातें सुनाते हैं. कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं चाहते, सिर्फ अंदर दिल में इंसान को बहुत दुख देता है. इसलिए दोस्तों एक एडवाइस ये है कि किसी ऐसी बात पर रिएक्ट ना करो और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, वो इंसाफ करने वाला है. शुक्रिया, जुमा मुबारक, हैप्पी जन्माष्टमी, सलमा अहमद किसुम.
0: ओके, हैप्पी जन्माष्टमी. और हैप्पी जन्माष्टमी कहा है रंजन विनोद ने लंदन से आप सबके लिए. चंद्रिका वसंत गोसाई.
3: अरविंद जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार. शर्मिली का गीत सुनकर बहुत आनंद आ रहा है. मिस यू सैटरडे संडे. थैंक यू वेरी मच चंद्रिका वसंत गोसाई. हैप्पी जन्माष्टमी सभी को.
0: जन्माष्टमी इसलिए मैं जरा गलती कर रही हूँ. शुभ प्रभात कहा है सभी ईस्ट एफएम के लिसनर्स को किसने, एमएल विश्वकर्मा ने इंडिया से. कहते हैं कि है होश जब तक जिंदगी में जश्न होना चाहिए. होश जब तक है जश्न होना चाहिए, खुशियां बन जाएं राधिका, मन श्री कृष्ण हो जाए. क्या बात, होना चाहिए खुशियां बन जाएं राधिका, मन श्री कृष्ण होना चाहिए. एमएल विश्वकर्मा बहुत शुक्रिया. रसीला गुड मॉर्निंग प्रवीण जी, व्हाट अ लवली स्टार्ट, हर चेहरा यहाँ चांद. और कृष्णा वाज बोर्न ऑन जन्माष्टमी. ओके, सो कृष्ण की है आज सालगिरह, कृष्ण जन्म.

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पर भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया है।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देते हैं मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है? जब देखो घूरती रहती हो मुझे, तुम्हें तो जादू डाला है मुझ पे।

0: और कृष्ण सर्वे ने कॉल किया है फ्रॉम लंदन. कहते हैं जो जीनत अमान ने वो उस फिल्म में काम किया था जिसका आपने बजाया है, कहते हैं यशोमती, कहते हैं कोई और कर नहीं सकती थी. जीनत अमान एक थी. ओके सोनल मोदा, आपने कहा है कि आज लॉर्ड कृष्ण का बर्थडे है जी, आपने केक की तस्वीर भी भेजी है, बहुत खूब. चिराग पटेल कहते हैं अगर ऋषि कपूर जिंदा होते ही वुड हैव बीन 74 टुडे. अच्छा, और ऑल्सो जन्माष्टमी सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्ण. बहुत शुक्रिया आपका. एक मैसेज भी सुना देते हैं आपको.
1: अस्सलाम वालेकुम परिन जी, आप ठीक हो? परिन जी तमाम मुसलमानों को साथ में आपको बहुत बहुत जुमा मुबारक, और कल जो जैफे होने वाला है उनके लिए भी तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ. हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन बनाएंगे कल जैफा में. जैफा है परिन जी, अपना ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज.
0: बहुत शुक्रिया हुस्ना मोहम्मद. और समिन, हम भी अपने प्रॉफिट की का जन्मदिन मना रहे हैं, जैसे आप लॉर्ड कृष्ण का मना रहे हैं, हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. और ये सारा महीना समिन चलता है उनके जश्न विलादत. आज एक जश्न भी हो रहा है, तो समिन होता रहेगा पूरा महीना. तो पहले मैंने शुरू की थी बात यहाँ से.

0: Ashwin, ये इतिहासिक डुएट है.
1: Yes, ऐतिहासिक. This is प्रवीण जी. हाँ. Iconic है प्रवीण जी.
0: जी.
1: ये थी फिल्म जुगनू.
0: अच्छा.
1: जिसमें नूरजहान. हाँ. और दिलीप कुमार वे द प्रिंसिपल स्टार्स.
0: अच्छा, दिलीप और नूरजहान.
1: Yes, नूरजहान. Yes, नूरजहान. Before she left for Pakistan.
0: हाँ.
1: She did this film. और उसको नूरजहान खुद गा रही है.
0: हाँ.
1: और फॉर दिलीप कुमार मोहम्मद रफी गा रहे हैं.
0: ओके.
1: और मोहम्मद रफी का दिस वाज हिज बिगिनिंग. पर
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: यस, 1947 की फिल्म है ये.
0: हाँ.
1: और एंड इट वाज द बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर.

0: और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि अभी अभी आपने फिल्म मेरा गांव मेरा देश का एक गाना सुनाया, लक्ष्मी छाया पे फिल्म आया गया था, जी हाँ, कहते हैं कि उसके गाने फिल्म में आशा पारेक से भी ज्यादा थे, और एक गाना था मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। ओके, आगे मैंने लगाया है आपके लिए डॉक्टर साहब, फिलहाल मैंने क्या करना है, आपको सेकंड जो दूसरा क्लिप है समय वो सुनाना है, आप मुझे बताएं ये दो कौन हैं?
1: आपने मुझे याद किया सर।
2: मिस्टर जगन्नाथ, आपके बारे में हमारी राय कुछ और थी, हम नहीं जानते थे कि आप इतने गैर जिम्मेदार निकलेंगे।
1: जी, मुझसे कोई भूल हो गई।
2: ये फाइलें वक्त पर दिल्ली क्यों नहीं गई?
1: जी, ये वक्त पर पूरी नहीं हो सकी।
2: क्यों नहीं?
1: उसके लिए काफी वक्त नहीं था।
2: क्यों नहीं था वक्त?
1: इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं ऑफिस में एक मिनट भी बेकार नहीं बैठा।
2: ऑफिस टाइम में काम खत्म नहीं हो सकता था तो उसके बाद रातों में काम कर सकते थे, इतवार को काम कर सकते थे, किसी छुट्टी के दिन काम कर सकते थे, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ओवरटाइम के पैसे मिल सकते थे।
1: माफ कीजिएगा, मुझे ओवरटाइम करने का या जरूरत से ज्यादा रुपए कमाने का कोई शौक नहीं है। मैं इतना ना समझ नहीं हूं कि रुपयों की खातिर अपनी बीवी और अपने परिवार को भूल जाऊं।
0: बहुत बड़ा समिन लेसन था इसमें। ये कौन बोल रहा है कि मैं पैसे के पीछे इतना नहीं भागता कि अपनी बीवी और बच्चों को भूल जाऊं? ये किसने कहा है और दूसरी आवाज किसकी है? क्यों नहीं किया इतवार के दिन ये काम?

समझ। आगे एक गाना है मोहम्मद रफ़ी साहब का, वो हम सुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किसने सबसे पहले हमें सही जवाब दिया और उसके बाद कौन कौन आया है और किसका एक आंसर गलत है।

और सबसे पहले जवाब देने वाली थी जगदीप नांद्रा. अभी जो मैंने सवाल पूछा दो आवाजों का, साथ ही आई है मंजुला गोरसिया, मंजू डागर. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. चिराग पटेल ने कहा देवन वर्मा, नहीं. मंजुला विश्वकर्मा करेक्ट. जे पनारा आधा आंसर. अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर सही. और जतिंदर ने बताया कि ये जो हीरो थे इस फिल्म में डबल रोल में थे, बिल्कुल सही. और कहते हैं कि दिस नीड्स टू बी डन, एवरी लीडर इन द वर्ल्ड हु इज कॉजिंग केओस मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए. जी बिल्कुल के ये आपने सही कहा है. अमीर अली राना, प्रवीण जी मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, प्लीज डेडिकेट दिस सॉन्ग टू वो अमेरिका के बड़े जो हैं. अच्छा आपने और रूप, आपने और क्या है के ने बिल्कुल सेम सोचा है. अच्छा सोनल मोदा, आज इंटरनेट का काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है मुंबासा में, सो इसलिए आंसर नहीं दे पाई, पर ये जो आपने लिखा है वो आपने भेज दिया है तो आंसर भी आज आ सकता था. आशा भीमानी, आपने कहा है कि ये विनोद, बिल्कुल करेक्ट. समिन एक आवाज़ थी विनोद मेहरा की और दूसरी आवाज़ थी जितेंद्र की, ये जो सेकंड क्लिप था.

ये फिल्म थी आजाद ना के अंदाज, ये भी बड़ी कामयाब हुई होगी, म्यूजिक तो बहुत ही अच्छा था। खैर समिन चिराग पटेल आपने आंसर करेक्ट कर लिया है, और ये फिल्म जिसके दो क्लिप्स मैंने आपको सुनाए समिन, इसका नाम था प्यासा सावन। अब मंजुला कहती है 1981 की फिल्म थी, हो सकता है, और जितेंद्र ने कैसे डबल रोल किया और क्या थी क्वालिटी उस एक्टिंग की ये मैं नहीं जानती, पर था उनका डबल रोल।